0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।
1: हेलो दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका

0: बेटा? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: क्रिसमस बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ।
1: यार है, इसको याद करोगी।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
5: गंगापुर सिटी की धरतल। रेडियो डीएस।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 998-34-13-111.
1: Hello.
2: नमस्कार
1: जी. नमस्ते, नाम बताएं आपका.
2: साबिर बोल रहा हूँ.
1: साबिर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं दशहरा मैदान का.
1: बताएं साबिर जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: गाना है एक सवाल मैं करो, एक सवाल तुम करो.
1: बिल्कुल सुना रहे हैं साबिर जी आपको, आपकी समय से बेहतरीन सा गाना.

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अरविंद मैणा।
0: अरविंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं अरविंद जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पर?
1: पेगा वारा की।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सुनाइए पेगा।

0: आपको भी, आपके समस्त परिवार जन और समस्त प्रदेशवासियों को। क्या नाम है सर आपका?
1: शहजाद खान पुराने जामा।
0: शहजाद जी बताएं कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं यार।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ईद के दिन गले मिले राजा।
0: सर
1: ईद के दिन गले मिले राजा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी, सुना इसका बेहतरीन सा गाना रेडियो देश में कुल किया।
1: ओके सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: पूनम।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: शरारत सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम श्याम।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरे नाम फिल्म का।
0: ओके सर, सुन रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आप।
1: नाम तो हमारा बाबू खान है।
0: बाबू खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सीटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: साथियों नहीं।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका?
0: निशा शर्मा गंगापुर सिटी से।
1: निशा शर्मा गंगापुर सिटी से, बताएं निशा जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: रूप की रानी।
1: रूप की रानी, बिल्कुल सुना रहे हैं निशा जी आपको, आपकी फरमाइश का।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: आशीष मीना।
1: आशीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: नशिया कॉलोनी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: 150 बजा रखी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
1: तुलसीराम जी पीलू खेड़ा से, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जाना ना नैन मिला के।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी।

0: जी नाम बताएं सर।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
0: रूपचंद गोयल जी, आपको आपके परिवार के नाम समस्त श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। रेडियो डीएस टीम की तरफ से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: आज जो गीत सुना, पिक्चर का नाम है हनीमून और गीत के बोल है यू ना देखो तस्वीर बन के हंस दो मेरी तकदीर बन के।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ब्रह्मपुर सिटी से
0: बात। जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
2: हाँ सर जी, जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जम्मू से केशव शर्मा जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ सर जी ठीक ठाक। सर जी बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, कहीं काम पे चले गए थे क्या?
0: हाँ नहीं सर, मैं यही था, थोड़ा सा स्टूडियो से रिलेटेड काम था इसलिए व्यस्त रहता हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सर जी की आवाज नहीं सुनने को मिल रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप रेगुलर मिलेगी सर। बताए कैसा तापमान है जम्मू में?
2: हाँ सर जी मौसम आज थोड़ा ठीक है, नहीं 2-3 दिन तो बहुत गर्मी थी, आज थोड़े बादल छाए हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर।
2: आप पता नहीं ऐसे ही बोला है कि 2-3 दिन आज और कल मौसम ठीक रहेगा।
0: जी बिल्कुल,
2: 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी। जी
0: मौसम विज्ञान का अनुमान है और यहाँ गंगापुर सिटी में भी अभी फिलहाल 36 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है और 44 तक पहुँच जाता है सर, यहाँ भी गर्मी।
2: हाँ
0: बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: महबूब की मेहंदी का सुना दीजिए। महबूब की मेहंदी हाथों में,
0: महबूब की मेहंदी हाथों में, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुनाई से बेहतरीन।
3: तुम्हारे महबूब की मेहंदी सुना है, महबूब की मेहंदी का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर नहीं उतरता। लावण्य हाथ दे, अल्लाह करे इन हाथों से महबूब की मेहंदी का रंग कभी न छूटे।

0: हेलो।
1: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: दीपू मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बैरना।
1: ओके सर, सुना रहे आपके सामने। तो बंद कर दीजिए थोड़ी देर। हेलो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरबी गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मोतीपुरा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरा रंग बल्ले बल्ले।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: करोगे ब्लैकलिस्ट में पड़ जाएंगे।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लग कुछ नहीं है।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? मंगलपुर नशे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जाट के ले यार।
2: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
3: क्यों?
2: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: जाएगी। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: जी मेरा नाम महेंद्र कुमार है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: जी गंगापुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाना है सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे।
2: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: ये बॉबी फिल्म का गाना
1: नाम मैं शायद तो नहीं।
0: मेरा नाम है राम सिंह।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये बॉबी फिल्म है, इसका गाना मैं शायद तो नहीं।
1: ओके सर।

0: बेल आइकन।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:43 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है रेखा शर्मा जी की। रेखा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हाँ जी मैम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, जो ये होगी जांगड़े में तेरा छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं सायर तो नहीं
1: सुनो। सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।
0: धन्यवाद।

0: ओके मैम, सुना रहे हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: छोड़ के ना जाओ पिया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तोरे संग पीत लगाई।
1: तोरे संग पीत लगाई।
0: हाँ
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करूँगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: लतीफ अहमद रैना।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: कुर्बानी।
1: कुर्बानी?
2: हाँ। खैर सलामत।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सलाम अलैकुम खान बाबा, ईद मुबारक।
1: वालेकुम सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद का चांद की तरह आता है।
0: खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है।
2: ईद मुबारक।
1: तुमको भी ईद मुबारक।
0: आपसे एक जरूरी काम था।
1: बोलो बोलो बच्चा, जान हाजिर है। बिलायत? बिलायत क्या चीज है? हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमको चांद पे भेज सकता है। बैठो बैठो, पहले तमाशा देखो बच्चा।

0: वालेकुम
1: सलाम पठा रहे
0: अख्तर दे मुबारक शरोरा
1: ये मुबारक
0: खान बाबा वो हमारा दो कबूतर लोग आए थे इधर
1: कबूतर
0: हाँ वो अमर राजेश
1: आया था दाना खाया और उड़ गया
0: उड़ गया या यही कहीं छुपा हुआ है
1: कैसे छुपेगा ये करीम खान का घर है कबूतर खाना
0: कहने कहने तासु कहने

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम मनकी सिंह है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: मैसे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वाला गाना सुना दो।
1: इक्षु बाबला
0: लाल परी।
1: इक्षु बाबला ना सर?
0: हाँ
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम रिंकू।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगा को सुनी नशा को जाने।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बैरन सुनाऊंगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अमन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुन पाओगे?
0: फॉर्चुनर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो DS पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगा वो सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि। दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मोबाइल ऐप से जुड़ी, उनकी सुरक्षा सेवाओं से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों आज मोबाइल का चलन है, हम खाने के बगैर जैसे नहीं रह सकते, ऐसे शायद मोबाइल के बगैर भी नहीं रह पाते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मोबाइल की जो हमें संपूर्ण परिवार को ध्यान रहना चाहिए। एक तो जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आधिकारिक जो स्रोत होता है हमारा, हमेशा गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जब डाउनलोड करते हैं हम, तो इससे हमारे मोबाइल को हैक करके और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा पर्सनल डाटा चुरा सकता है, इसलिए आधिकारिकता ऐप से ही हम डाउनलोड करें। दोस्तों जब हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद में इंस्टॉल करते समय कैमरा कनेक्टिंग और लोकेशन की परमिशन भी तभी दें जब वह ऐप आपके लिए ज़रूरी और बेहद उपयोगी हो। दोस्तों बात करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिक F2A की। सुरक्षा की एवं अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए बैंकिंग और सोशल मीडिया ऐप्स में 2FA विकल्प का हमेशा ऑन रखें। मोबाइल को हमेशा नियमित अपडेट रखें, ऐप्स को अपडेट करते समय समय पर रहते रहें और अपडेट की सुरक्षा खामियों को भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों हमेशा आप जब भी आपके मोबाइल का पासवर्ड बनाएं तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। दोस्तों मोबाइल में कभी भी एक जैसा पासवर्ड उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग और नए लगाने वाले पासवर्ड, हमारी जन्म तिथि और गाड़ी के नंबर, इस तरह के पासवर्ड नहीं लगाएं ताकि कोई सामने वाला अंदाज़ा लगाकर और हमारी एप्लीकेशन को ऑन कर सके। हमेशा वो एप्लीकेशन में पासवर्ड लगाना चाहिए जो हमें याद रह सके। दोस्तों हमेशा पब्लिक वाईफाई से भी बचें, मुफ्त या सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील एप्लीकेशन जैसे नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय डाटा चोरी होने का खतरा बढ़ता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो यदि हमारे मोबाइल में नेट चल रहा है तो उसी का उपयोग करें, और वाईफाई वगैरह अगर लुफ्त मिल रहा है मुफ्त का तो घातक सिद्ध हो सकता है, और हम जान पहचान वाले वाईफाई से ही कनेक्ट करें। दोस्तों डेटा एंटी करप्शन सुरक्षा ऐप एंड टू एंड करप्शन का उपयोग करें, जिससे संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के अलावा तीसरा उसे पढ़ ही नहीं सकता। बायोमेट्रिक सुरक्षा के बारे में भी हम जानेंगे, फिंगर प्रिंटिंग या फेस आईडी लॉक का उपयोग करें ताकि आपके फ़ोन को अनलॉक होने पर भी ऐप्स सुरक्षित रहें। दोस्तों मोबाइल में हमेशा गोपनीय नीति प्राइवेसी पॉलिसी ऐप एप्लीकेशन से पहले ये जरूर देख लें कि आपका डेटा किसी तीसरी कंपनी के साथ साझा तो नहीं हो रहा है। दोस्तों गोपनीय नीति ऐप इस्तेमाल करते समय आपका तीसरी कंपनी को कभी भी साथ नहीं होने दें, ये चेक करते रहें। और एंटी मॉलवेयर ऐप यानी आपके स्मार्टफोन का एक भरोसेमंद सुरक्षा ऐप एंटीवायरस रखें जो संबंधित गतिविधियों और वायरस को सदैव स्कैन करता रहता है। मोबाइल से लेकर जो सजग आपको रहना है, आपकी डिजिटल पहचान भी आपको सुरक्षित रखनी है और प्रभावी तरीके से रखनी है। दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में बातचीतें तो और होती रहेगी, फिलहाल चलते हैं और वक्त हो चुका है आपके मनोरंजन का, सुनते हैं यह ट्रैक।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
3: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी।
4: जी, वेरी गुड आफ्टरनून।
3: डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप मेहमान के रूप में पधारे हैं। सबसे पहले तो हमारे सब सुनने वालों को आप अपना परिचय बताएं।
4: जी, मेरा नाम डॉक्टर सुष्मिता सेन है और मैं लखनऊ से हूँ और मैंने हिंद मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कम्प्लीट किया है और करंटली आई एम प्रिपेरिंग फॉर एम्स। अभी मैं एम्स में PG की तैयारी की सोच रही हूँ, अभी मैंने डिसाइड किया नहीं है। मैं हर एक जर्नल के रूप में अभी कार्यरत।
3: बहुत अच्छा है, और आप इतनी कामयाब हो रही है। और आज महिलाओं में अक्सर देखा जाता है बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं आज विशेष तौर से महिलाओं के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आम जो महिलाओं में समस्याएं दिखाई देती है वो ज्यादातर क्या दिखाई देती है?
4: जी, आजकल बहुत जो कॉमन है वो है PCOD, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। ये अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रेगुलर पीरियड्स हो गए, महीना सही नहीं आता है बच्चियों का, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, इसके लिए हम एक जांच करवाते हैं जैसे बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड।
3: जी,
4: अगर अल्ट्रासाउंड में क्लियर हमें नहीं हो रहा है तो फिर हम MRI करवाते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है, तो क्या आप इसके लक्षणों को जानना पसंद करेंगे?
3: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि किस उम्र की बालिकाओं में ज्यादातर पनपना शुरू हो जाता है?
4: ये खासकर 14 से लेकर के 15 साल में ये शुरू हो जाता है, और ये मोटापे से संबंधित बहुत ज्यादा है। जिनके घर में मोटापा है उन बच्चियों के घर में बहुत ज्यादा कॉमन है ये PCOD। ये खासकर मोटापे से रिलेटेड बीमारी है, और जो चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है जिनके घर में, उनके घर में ये बीमारी बहुत ज्यादा है।
3: सुष्मिता जी, इसको पहचानने में कब इंसान मतलब गणना करने लग जाता है कि यह बीमारी हमारे में शुरुआत दस्तक दे चुकी है?
4: जब ये बीमारी जब शुरू होती है तो महीना महीना लगभग लड़कियों का 13-14 साल की उम्र के बीच में ये महीने की शुरुआत हो जाती है। तो अगर महीना बिल्कुल हर महीना सही आना चाहिए, अगर महीना सही नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। और 90% केसेस में देखा जाता है कि लड़कियों को PCOD होता है, और इसमें चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी, ये सब लक्षण होते हैं जो बिना जांच के ही पता चल जाते हैं। गर्दन थोड़ी सी काली होने लगती है, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे होने लगते हैं, मोटापा, पूरे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, तो इससे पूरा पता चल, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये बाहरी संकेत से ही हमें पता चल जाएगा कि ये दिक्कत है।
3: अच्छा, गाँव में आज भी अक्सर जो छोटी बच्चियां हैं वो बात करने से डरती है, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बताने से डरती है, तो आपकी क्या राय है इस संबंध में?
4: जी, मेरे ख्याल से ये लोगों को जागरूक हमें करना चाहिए। जितना लोग जागरूक होंगे उतना ही लोगों में ये जो थोड़ा सा शर्म जो भी है छुपाना, ये धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जितना हम चीजों को बात करेंगे इस पे उतना लोग थोड़ा खुल के, अब तो बहुत सोशल मीडिया के थ्रू हम इन सब चीजों को धीरे धीरे हटा सकते हैं।
3: अच्छा, बात करें इसके बचाव की, तो हम शुरुआती दौर से अगर इस पे बचाव पर अगर कार्य करना चाहे जो भी महिला या बच्चियां हैं, तो मतलब कौन कौन सा खान पान रहना चाहिए उनका, क्या क्या

0: दिनचर्या रहनी चाहिए?
1: जी, दिनचर्या में कम से कम उनको तेज दो, एक से डेढ़ घंटे उनको चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। साइकिलिंग जितना मूवमेंट होगा, जितना, ऐसा नहीं है कि दौड़ना है, लेकिन चलना फिरना दो घंटे तो मिनिमम होने चाहिए। और घास पे चलना, नंगे पैर, ये सब भी बहुत ही लाभ माने जाते हैं, बेनिफिट होता है इनका। और दवाइयों से भी काफी लाभ मिलता है। और वेट लॉस, सबसे पहले अगर वजन ज्यादा है तो वजन को 20-30% उनको कम करना है। और हरी सब्जियां खाना है, रोटी, चावल, दाल, ये सब उसको कम करके हरी सब्जियों को ज्यादा वरीयता देना है।
0: सुष्मिता,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: घर के हरी सब्जियों को ज्यादा वरीयता देना है।
3: सुष्मिता जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं या बालिकाएं अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना पहले के समय में देते थे, तो क्या आप मानते हैं कि आज अपने आप के लिए भी समय निकालना जरूरी है, और जो पौष्टिक आहार है उन्हें लेना कितना उचित रहता है?
2: जी, बहुत ही जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप महंगे महंगे फल लीजिए, 400-500 रुपए खर्चा करिए। आप सीजनल लीजिए, 2-10 रुपए के, जो अभी तो सीजनल आ रहा है, खीर आ रहा है 10 रुपए में ही आ जाता है, चुकंदर आ रहा है, ये सब 20-30 रुपए के बजट है, अपने स्वास्थ्य पे लगाइए और सस्ती चीजें सीजनल फल खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा।
3: अच्छा, खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को क्या शामिल करना जरूरी होता है?
2: मेरे हिसाब से अगर ये खासकर की अगर गर्भाशय की बात है तो उनको खासकर दालचीनी का सेवन हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नहीं खानी है, अदरक हो गया, ये सब इनको अपने खान पान में जरूर ऐड करना है। चुकंदर तो ऐड ही ऐड करना, उसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, और दवाइयों से तो काम होता ही है, लेकिन खान पान जितना अच्छा रहेगा उतना बेस्ट है। और एक घंटा अगर ही समय देंगी टहलने और काम में तो फिर वो बीमारी और भी बढ़ती जाएगी। कुल मिला करके साइकिल, एक्सरसाइज, जॉगिंग जितना हो सके ये सबसे बेस्ट है। योगा, सूर्य नमस्कार अगर है तो सूर्य नमस्कार तो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से।
3: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। मुझे आखिरी और अंतिम जो प्रश्न है मेरे मन में उभर रहा है वो ये है कि अगर PCOD से ग्रसित महिला या बालिकाएं हैं तो उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का डॉक्टर से उपचार करना चाहिए?
2: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसकी क्या जांच होनी चाहिए, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमेन, होल एब्डोमेन का करवाते हैं, तो उसमें हमें दिख जाता है कि अंडाशय का कितना साइज है, कितना बड़ा है, क्या दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है या नहीं। तो ये सबसे पहली जांच होती है जो हर महिला को पता होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन। उसके बाद फिर हम FSH करवाते हैं, LH करवाते हैं, प्रोलैक्टिन करवाते हैं, ये सब खून में ही, ये एक बार हम खून का सैंपल ले लेते हैं और उसी से ही सारी जांचें हमारी हो जाती हैं। उसके बाद अगर जांच में कुछ निकला तो सबसे कॉमन है मान लीजिए कुछ नहीं भी निकला तो भी एक OCP हम देते हैं जो 21 दिन खानी होती है महिलाओं को
3: जी।
2: हर महीने 21 दिन खानी होती है वो OCP, और साथ में हम मेटफॉर्मिन भी देते हैं जो कि शुगर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, लेकिन हम इसमें भी देते हैं मेटफॉर्मिन नाम की दवा आती है। तो इससे जो उनके अंडाशय का जो स्वास्थ्य है वो और अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाती है। और कभी भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे हो और बाल आए तो तुरंत उनको संपर्क करना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। और अगर दवाइयों से भी ना काम चले तो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। हम उनके अंडाशय में छोटे छोटे एक तरीके से हम उसको चुभाने की एक ड्रिलिंग करते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग। तो उससे क्या होगा, उनके अंडाशय में जो अंडे बन रहे हैं वो और तेजी से बनने लगते हैं। तो हम दूरबीन के जरिए उनके जो अंडाशय है उनके अंडाशय में हम थोड़े थोड़े बहुत निशान लगा देते हैं 10-15, तो जिससे अंडे बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
3: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेगी महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए?
2: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान को सबसे उत्तम रखना है, और कोई भी तली भुनी चीजें नहीं खानी है, और टहलना है, योगा करना है, अपनी अपने शरीर को कम से कम 2-3 घंटे देने हैं, और बाहर की चीज तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और वरना बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हमें छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देना है ताकि वो आगे जाके खतरा ना बने।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सटीक जानकारी विषय पर आपने हमारी सभी महिलाओं, माता बहनों को बताया। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।
2: जी, थैंक यू सो मच।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडियास गंगापुर सिटी का तड़का, भर में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों अभी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्दी करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस।

0: फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताए सर आपका।
0: बाबू खान।
1: बाबू जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं अगर। हेलो।
0: हाँ जी
1: जी, गाना बताएं सर।
0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से, बेहतरीन सा गाना। रेडियो डी इसमें तुल किया, धन्यवाद। हेलो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: आरबी गुर्जर।
2: आरबी जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर।
2: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आखिरी सांस।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: नमस्ते सर।
3: जी नमस्ते, नाम बताएं।
2: बढ़िया सर।
3: हाँ बढ़िया है हम, आप नाम बताएं आपका।
2: मेरा नाम सौरभ खटारा।
3: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हम कैमरी से।
3: कैमरी से बताएं सौरभ जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: गोरी नाच है, लंगोरी नाच है।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं,

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: प्यार नहीं करना जहान सारा खेता।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं कोमल जी आपको, आपकी प्रवाइस।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मोनिका।
1: मोनिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: बताएं मोनिका जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मोनिका जी आपकी फरमाइश का।

0: जी नमस्ते सर।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका?
0: विनोद कुमार सैनी।
1: विनोद जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी मऊकला।
1: बताएं विनोद जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर हिमेश रेशमिया का सॉन्ग है, ओ यारा दिल ना तोड़ना, मूवी नेम आपका स्वरूप।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का, बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 800-55-98-377। इसके अलावा 9983413111।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नाम रविंद्र मीणा।
1: रविंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चोरी गली से घर छोड़ गए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुनवाई से बहन।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: एफएम से बोल रहे हो?
0: जी एफएम रेडियो से बोल रहे हैं सर, आपका नाम बताएं।
1: आयुष मीना।
0: आयुष जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहता हूँ। हेलो।
1: फाइनेंसर सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

दोस्तों 5:22 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ टून का 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान तापमान 41 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री सेल्सियस

0: गोविंद मीणा।
1: गोविंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से जी।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोटी चैन मोटा पैसा दिखाने को ही मारे बेटा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुबह से ही गाना।

नहीं मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्ला भाई पैसा ही पैसा, चैन मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं
1: सर। नमस्ते
0: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम ऋषभ शर्मा।
0: हाँ शर्मा जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: मेरे गाने का नाम
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो जी,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते। नाम बताएं आपका। शर्मा
1: शर्मा,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम नसिया कॉलोनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हम चांदनी रात में गोली चला गया।
0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।
2: हेलो
3: हेलो

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: कृष्ण कुमार मीणा।
1: मीणा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सर केवल फिल्मी गाना बताएं, आप फिल्मी गाना चला सकते हैं। जी सर,
0: एक कटोला जेड़ के भीतर है।
1: ठीक है सर, सुना रहे हैं आपके, आपकी फरमाइश का।
2: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों, अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा जल्दी करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुड आफ्टरनून सर, निशा शर्मा गंगापुर से कहते हैं।
1: निशा जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: चुनरी चुनरी का न्यू वर्जन सॉन्ग आया है अभी।
1: कौन सा गाना है?
0: चुनरी चुनरी न्यू सॉन्ग आया है वो।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ निशा जी आपको, आपकी समय इसका बेहतरीन सा गाना रेडियो डी एस में कुल किया।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: हेलो हेलो
2: हेलो फरमाइश
1: यस सर नमस्ते नाम बताएं आपका
2: नमस्कार नमस्कार मैं शारदा प्रसाद
1: हाँ प्रसाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
2: आज आपसे सुनना चाहता हूँ फिल्म का नाम है जिगर
1: जिगर का
2: प्यार के कागज पर दिल की कलम से
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है सर सुना रहा हूँ मैं आपको आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में कुल किया धन्यवाद

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: आशीष सैनी।
1: आशीष सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: लाल परी, लाल परी।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का ही गाना।
0: हेलो
1: जी, नमस्ते, नाम बताएं सर आप।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ भी
3: ऋषि भाई, मेरा नाम विमल शर्मा मामा है।
4: विमल शर्मा जी, बड़े दिनों बाद फोन किया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं गंगापुर सिटी मऊखला से बोल रहा हूँ।
4: पता है विमल जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी से?
3: आज आंखें पिक्चर का है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
4: क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन गाना है, सुना रहा हूँ मैं आपको। आपकी
3: आप तो करते नहीं हो।

0: याद कभी कभी।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: मनीष सैनी।
1: मनीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गंगापुर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: हीलिंग।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश रहेगा।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर।

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना

0: इसमें है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, जो सन 1960 में आई थी। इस गीत में मीना कुमारी राजकुमार के साथ अपने खामोश प्रेम के खो जाने का ताना नादिरा जी को इस तरह देती है। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की टीम ने इस गीत को कुछ ऐसे अंदाज में बनाया है कि आज भी पिकनिक के लिए ये पसंदीदा गीत माना जाता है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS89.6 शहर की धुन।
1: सालों पुराना ये गीत दो बातों को गलत साबित करता है। पहला, मीना कुमारी अच्छा डांस नहीं कर सकती, और दूसरा, लता मंगेशकर अपनी बहन आशा की तरह मस्ती भरे गीत नहीं गा सकती। 89.6 DSFM पे आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे, मैं तनीषा आपके साथ।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा,
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हेरा रे रा,
2: हेरा रे रा। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों, कहते हैं हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा,
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हेरा रे रा,
2: हेरा रे रा। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों, कहते हैं हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हे रा रे रा,
1: हे रा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों, कहते हैं हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस ट्यून इन किया आपने 89.6 रेडियो डीएस। और थोड़े दिन पहले ही जापान में भूकंप आया था, उसी पे मैंने रिसर्च किया और पाया कि भूकंप को कोई इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उन्हें सांप यानी कि स्नेक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब भी अर्थक्वेक आए उससे वो 75 माइल पहले ही पहचान लेते कि अर्थक्वेक आने वाला, और कई बार तो 5 दिन पहले भी वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब गंगापुर सिटी में अगर आपका कोई दोस्त प्रेडिक्ट करे कि अर्थक्वेक आने वाला है और अर्थक्वेक आ जाए तो वो आपका दोस्त नहीं, वो सांप है। फिलहाल गाने सुनो, बैक टू बैक 4 गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: Stop us to take it harder.
1: बस ऐसे ही अमेजिंग गाने सुनने मिलते हैं आपको 89.6 रेडियो डीएस पे। और एक अमेजिंग एक और फैक्ट है, किसी जानवर किसी एनिमल का अगर आपको ब्रेन साइज पता करना है कि उसका दिमाग वाकई में कितना बड़ा है, तो आपको सिर्फ उनके यौन पे यानी उबासी पे ध्यान देना है। जितना लंबा वो यौन करेंगे उतना बड़ा उनका दिमाग। अगर आपके दोस्त यौन करते वक्त सिर्फ बस तो समझ लेना कि उनका दिमाग कहीं मत जाना। बैक टू बैक अमेजिंग गाने आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।
0: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।

0: वापस किसी के घर कर
1: देखो, कई बार लोग परेशान होते हैं अपने हाइट की वजह से, लेकिन गानों की वजह से कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा रेडियो डीएस 89.6। और हाइट इश्यू रहता है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं लंबा नहीं हो रहा, तो उनके लिए मेरे पास सोल्यूशन है कि भैया फैक्ट है कि जितनी भी बार एस्ट्रोनॉट्स आसमान में जाते, वो स्पेस में जाते, फिर वो जब वापस धरती पे लौट कर आते हैं तो उनके हाइट में इजाफा होता है, वो 2 से 3 इंच तक लंबे हो जाते हैं। तो अगली बार अगर आपका कोई छोटा दोस्त या आप खुद परेशान हो कि हाइट नहीं बढ़ रही है यार गंगापुर सिटी में सब मुझे तंग करते, तो एस्ट्रोनॉट बन जाओ। फिलहाल भैया आज का शो यही तक था, फिर कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। इस वक्त अमेजिंग बैक टू बैक कुछ गाने एंजॉय करो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं बात करने वाली हूं बॉलीवुड के मशहूर संगीत। उन्होंने कभी हमें इमोशनल किया तो कभी हंसाया। आज भी लोगों के दिलों में वो राज गाने बना रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया।

0: स्टाइल का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। हम बात कर रहे थे राजेश रोशन जी की। राजेश रोशन जी ने छोटी उम्र में संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू की थी। उन्हें शुरू में ये शिक्षा उनकी माँ ने दी, लेकिन बाद में ये शिक्षा वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी से लेने लगे। कुंवारा बाप के लिए गाना कंपोज किया। गाने के बोल थे सज रही गली, जो इन्होंने 15 किन्नरों के साथ रिकॉर्ड किए थे।

0: आए हैं हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मैं मंदिर पहुँचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के, ये माँ को दे दूं मंदिर में रख दो। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाश दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम ना आया। सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर सा लादा मैं वापस भाग।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: फिल्म निर्माता राकेश रोशन की फिल्मों में अमूमन संगीत उनके भाई राजेश रोशन का होता है। रोशन ने भाई राकेश की फिल्मों के अलावा अन्य फिल्मों में भी संगीत दिया है। 1975 में प्रदर्शित जूली फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई और सफर आज तक जारी है। इस फिल्म में दिल क्या करे जब किसी को, माय हार्ट इज बीटिंग, ये रातें नहीं पुरानी और जूली आई लव यू जैसे गाने में रोशन का संगीत श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। जूली की सफलता के बाद राजेश रोशन को शुरुआत में ही नई पहचान मिल गई थी। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। 70 और 80 के दशक में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में पूरे शबाब पर थी, उस समय किसी भी नए संगीतकार को हिंदी सिनेमा में स्थापित होना आसान नहीं था। 1975 में K.S. सेतु माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जूली ने राजेश को हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस फिल्म के संगीत की खूब तारीफ हुई और राजेश रोशन को इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब भी मिला। ये पुरस्कार राजेश रोशन ने एक बार फिर साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है के लिए जीता। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम। दोस्तों आज की सभा का यही समापन करते हैं। रात्रि के 11 बज चुके हैं, प्रातः सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि मित्रों।